पुजारी होर गुस्से च आ गया। पुजारी कहिंदा जाओ धन्या तैनू जू क्या जाके अपना काम कर, ये कोई मखौल थोड़ा कि तेनू मंदिर विचो मूर्ति चुके दे दे। धन्ने ने बड़िया मिन्नता कीतिया पर पुजारी ना मने। ते धन्ना सी जट, धन्ने नू चढ़ गया गुस्सा। गुस्से च धन्ना कहन लगा देखो पंडता हुण तक ते मैं हाथ जोड़े ने तू मन्निया नहीं, सीधी तरह एक ठाकुर दे दे जे मैनू

थोड़ी जी चीज पुजारी मूर्ति दे मुंह नूं लांदा अद्धी आप रख लैंदा अद्धी चीज लोकी कर लै जांदे पर तां ना समझदा ए पत्थर दियां मूर्तियां सब कुछ खांदियां ने ते तन्ना भी कहंदा ठाकुर रोटी खा ठाकुर मैनू ए नहीं पता आरती किवें करी दी मैनू ए नहीं पता अरदास किवें करी दी पर ठाकुर मेरे मन विच प्यार बड़ा है कृपा कर ते रोटी खा ले हाथ जोड़दा तन्ना मिन्नता करदा मथे टेकदा

जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी रोटी नहीं खानी पावे मेनू भुखिया मरना पवे। साध संगत जेड़े लोग ए गल कहंदे ने किथे रब

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उठापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तपतापे, आप

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पीसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे ठिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

कहूं पवन है के बहे वेग ऐसे कहे मोन आवे कथों ताह कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांगो धन देत हो।

0: श्रवण करो प्रोफेसर दर्शन सिंह जी दी नवी कैसेट अपना घर।
1: ते जे ओ अपनी मर्जी नाल आनंदपुर दी धरती ते बैठ के अपने जीवन दा फैसला भी ना कर सके ओनू ओथों ही रोक दिता जाए। जे ओ अपनी मर्जी नाल अपनी ही राजधानी दिल्ली विच भी ना पहुंच सके रस्ते विच।
0: भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वालियां दी नवी कैसेट

सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सिमरत नाम मने सुख पाइए, सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो।

धरती दी पालना करन वाला ऐ बादशाह भगत लोग उस गोपाल राय दी सेवा करदे ने अकुल निरंजन जिदी कोई कुल नहीं जेड़ा माया दे प्रभाव उत्ते है उस गोपाल राय दी भगत लोग सेवा करदे ने भगती करदे ने ते ओदे कोलों भगत दान दीजे जांचे संत जन उस गोपाल दी सेवा करके ते भगत

सराय चा बड़ा वड़ा शैमियाना है तंबू है केड़ा। ए बादशाह तू अपनी वास्ते तंबू लुआना है।

सरायचा है, तंबू है, इंसान जहाजा ते चढ़ लवे, राकटा ते चढ़ लवे, कितना भी यतन कर लवे, पारिस परमेश्वर दे तंबू विचू इंसान बाहर नहीं निकल सकता। ओदे घर विच बैकुंठ है, अते सपत लोक समान पूरी आले, ए जड़े पताल ने ए ओदे घर विच

बहुत है। उस गोपाल राय दे कार खेड कर दिए, कदी किसे नु मार दें दिए, कदी किसे नु मार दें दिए। इस करके ओ जिड़ा मेरा गोपाल राय है, जिदे कार सूरज चंद्रमा दीवे तरह ने, मौत जिड़ी है ओ दे कार खेड।

महादेव जी नूं क्यों उचारना पिया। हिंदुस्तान दे बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने

मान लिया ते बादशाह कह लगा देखूं तेरा हर बीठला ऐ नामदेव दस मेनू तेरा बीठल तेरा भगवान कित्थे।

सात घड़िया का समा दिता, अगर सात घड़िया विच ए मरी हुई गां जिंदा ना हुई ते नामदेव नूं हाथी दे पैरां थले लताड़ दिता जावे। नामदेव नूं कैद कर ले, नामदेव दे नाल प्यार करन वाले मुहम्मद बिन तुगलक बादशाह दे कोल गए ते बादशाह नूं ए बेनती कीती।

कर दिया ताकि लोगों की तसली हो जाए। ता नामदेव जी ने कहा, ऐ परमेश्वर और कुछ ना कर, बस गां जिंदा कर दे। परमेश्वर ने कृपा की, मरी हुई गां जिंदा हो गई, वच्छे समेत ते नाले दुध दिया

ऐ मोहम्मद बिन तुगलक बादशाह, मेरी प्रीख्या लैण दा तां फायदा है जे हुण तू भी सच ते चलें, किसे नूं दुख ना देवें।

खुश होके भगत नामदेव ने बहुत सारा सोना चांदी भेट किया, पर नामदेव जी ने उस सारा सोना चांदी गरीबां च वंड दिता। आप तो रुपए बादशाह ने एक बड़ा कीमती दुशाला कह लो, सेज कह लो, बड़ा कीमती दुशाला सेज नामदेव वास्ते अपने दरबारियां नु दिती। बादशाह ने दरबारियां नु कहा, जिथे नामदेव जी बैठन ऐसे जा नामदेव नु भेट कर देनी, ते नाले मेरे वल्लों कहना कि बादशाह दी इच्छा है कि ऐसे जा किसे नु दान नहीं करनी, ए वशा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पए, नाल बादशाह दे दरबारी तुर पए। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे ने।

दिसे जा तुसा आप वर्तनी है संभाल के रखनी। नामदेव जी ने ओ कीमती से जा चुकी ते नदी विच सुट दी। दरबारी वापस चले गए। बादशाह नु बेनती की, बादशाह भगत जी ने तुहाडी से जा पानी विच सुट दी। बादशाह नु बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया, पर कर कुछ नहीं सी सकदा। दरबारियां दे नाल फिर बादशाह उस नदी किनारे भगत नामदेव दे कोल आया ते कहन लगा, भगत जी मैं बड़ी श्रद्धा नाल सीजा दीती सी, तुसा नदी विच सुट दीती। नामदेव जी कहन लगिया, बादशाह तू संभालण वास्ते कहा सी, असी तेरी सेजा पानी विच संभाल दीती। बादशाह कहन लगा, महाराज जे संभाली है ता मैनू एक वारी दिखा दियो ताकि मैनू तसल्ली हो जावे। उस वक्त भगत नामदेव जी कहन लगे, चंगा फिर बादशाह अपनी सेजा देखनी है ता पानी दियां लहरां वाल तक, जदू तेरी सेजा आवे ता पहचान लवे। बादशाह पानी दियां लहरां वाल तकन लग पे।

भक्त नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान ता कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती, अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर।

अमृत बाणी बोली मिठी हो जाती। जे गुरु दयाल हो जाए पवन त्रैस हो जाए तिना लोगों की सोची हो जाती। गुरु दयाल हो जाए तो इंसान उची पदवी नू

गुरु दयाल हो जाए, देहोरा फिरे देवरा कहते ने मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा है नामदेव नु। जदो पंडता ने नीवी ज्यादा समझ के मंदिर विचों कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता तो भगत जी कहंदे ने

बादशाह ने पूछया, भगत जी एक सहज ता मेरी है, ए बाकी सहजा कीमती किस दिया ने? ता नामदेव जी कहन लगे, बादशाह जदू कोई परमेश्वर दे नाम ते अपनी कमाई विचों कोई चीज दान करदा है, पेट करदा है दसां नूं दी फिरत विचों, ताओ दान कई गुणा फल के उन्हों मिलता है। ए सारिया सहजा तैनू मिलनिया सन, पर तू दान करके शंका कीता, इस करके ए चीजा हुण तैनू नहीं मिलनी। ता बादशाह उस वक्त हाथ जोड़ के कहन लगा, भगत जी मैं भी बादशाह हिंदुस्तान दा, सारे लोग मेरे को डरदे ने पर तुसी नहीं डरदे। उस वक्त भगत नामदेव जी ने मलार राग दे विच ए शब्द उचारिया, सेवी ले गोपाल राय अकुल निरंजन। ऐ बादशाह तू दुनिया दा बादशाह अज है, कल खत्म हो जाएगा, पर जिहड़ा साडा बादशाह है ओ परमेश्वर, ओ गोपाल, ओ कदी खत्म नहीं होंदा, उन्नू कदी मौत नहीं आंदी। उसने दुनिया बनाई है, खंड ब्रह्मांड बनाए ने।

उस परमेश्वर दे घर की है, भगत जी ने बयान किया। जांचे कर निकट वर्ती अर्जन, ध्रुव प्रहलाद अमरीक नारद नेजे, सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला, एते जी जांचे है करी, सर्व व्यापक अंतर अरि, प्रणवै नाम दियो तांची आन, सगल भगत जांचे निशान। ऐ बादशाह, ओ परमेश्वर, इतना ब्यांत है, ए जो मैं दसे है, ए ता कुछ भी नहीं, सब कुछ होद है, ओ बनान वाला है, प्रणवै नाम दियो तांची आन। नामदेव आखद है, ऐसे गोपाल राजे दी असी शरण विच हां, ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लैंदी है। इस करके भाई, राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो, क्योंकि उस गोपाल राय तू कोई भी वड्डा नहीं।

हाथ दोनों गोड़िया ते रखे ने उत्ते सिर रखे थोड़ी दूरों रावी नदी पे वगदी कान जेड़े ने कुछ सुनन दी कोशिश पे कर दे ने ए बीबी पिंडू अनपढ़ है पर मन विच रब दा बड़ा प्यार है तीन दिन हो गए ने इस बीबी नू ए आवाज सुन दे रोज आंदी ए पति नू रोटी खवाण वास्ते आवाज विच ऐसी खिच है इत्थे बैठ के ए रोज आवाज सुन दी अज तीसरा दिन है कदी कदी आवाज सुनाई दिंदी कदी पानी दे शोर विच गुम हो जांदी है पर जदों आवाज सुनदी है ता मन खिंचिया जांदा है कहन लगी मना चल के देखा ये गाण वाला कौन है कहन लगी ढाडी भी सुनी देने व्याहां दे विच गीत भी सुनी देने गाई दे भी नहीं पर एडी मिठी आवाज अज तक सुनी नहीं चल के देखा भला कौन है गाण वाला।

खाली भांडे सिर ते रख के उस पासे तुर पई जिधरों आवाज आ रही आवाज सुन के जिधरों आवाज आ रही है उस पासे ए बीबी

बगैर रहो ही ना ताकि दुख लागे ना आन। साहब जी शब्द पढ़ रहे ने, इस बीबी ने वो दुध का कड़वा कोल रखे है, चौंकड़ा मार के बैठी सिर धरती नाल जा लगा।

तीन प्रशादा च खुआ के दुध लैके धन गुरु नानक साहब जी कोल आना फिर वापस घर जाना जेड़ा समा वेला बचना घर दे बूहे बंद करके चौंकड़ी मार के मन धन गुरु नानक साहब के चरणों के नाल जोड़ लेना रोज का यही नियम बन

हरी तू बगैर मैं क्यों जीवा, क्योंकि उदे तू बगैर तो जीवना कुछ भी नहीं। गुरु साहब जी शब्द पढ़ रहे ने, ए दुता दूर सारे एक दरखत दे ओले लुक के बैठ गए देखण वास्ते कि हुण की हुंदा। तन गुरु नानक साहब ने शब्द का भोग पाया, बीबी ने दुध सामने रखे, गुरु साहबां ने दुध दे चार हिस्से।

अच्छा असी अलपग जीवा तू सरबक है सब कुछ जानदा है तेरिया तू जाने मैनू नहीं पता कि चौथा

के दूधा डोलू लेके नदी से पहुंचे। डोलू पानी दा भर के तुर पे, तीन चार कदम तुरे है। अचानक डोलू ते निगाह गई ता डोलू विच दूध नजर आया। अखां मलमल के देखते पर सचमुच दुध है, बड़ा हैरान होया। कहन लगा भरिया ते पानी सी, दुध किवें हो गया। वापस नदी ते मुड़े है। नदी वाल देखिया, नदी विच पानी डोलू विच दुध, बड़ा हैरान होया। उस दुध नू नदी विच डोल के फिर डोलू पानी विच उतां इकट्ठा करके चंगी तरह डोलू फिर बाहर कढ़िया, बड़ा हैरान होया। नदी विच पानी डोलू विच दुध, पांच छे कदम उत्ते चला गया। फिर डोलू भरिया, डोलू नदी तो बाहर कढ़े है, बड़ा हैरान। डोलू विच दुध, नदी वाल निगाह मारी ता सारी नदी इनू दुध दी बगदी होई नजर आई। हैरानगी दी हद ना रही। अपने खूह ते गया, उत्थे भी दुध मिले। जिथे भी गया इनू पानी ना मिलिया, दुध ही दुध मिलिया। ता मान टुट गया, कहन लगा ओ मना, एक गड़वा गुरु नू दुध भेट करके कहना है कि मैं गुरु नू दुध प्यारी। ओ मना, जेड़ा गुरु दुध दिया नदियां पिया वगांदा है, उस गुरु नू तू की भेट दे सकदा है। मान टुटा, आके गुरु साहिबां दे चरणां ते

कि धन गुरु नानक साहब की शोभा बड़ी हो रही है, इस नु खत्म करना चाहिए। दुनिया विच ऐसे इंसान भी ने जेड़े ना चंगा काम करते ने, ना किसी करन देते, ना आप रब वाले पासे जाना, ते कोशिश होंदी है कि ना ही दूसरा कोई जावे।

दर्शन करता है, बाणी सुनता है, श्रद्धावान हो गए। और एक दिन करोड़ी आप ही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा बादशाह इस सारी धरती आप

ये संसार एक वृक्ष है, इस वृक्ष ते सारे ही पंखी बैठे हैं। आप जानते हो कि पंखी अपनी अपनी चोग चुग के जदों सूरज लथ जांदा रात पैण लगदी है तां वृक्ष ते आके कट्ठे हो जांदे हन। इसे तरह ये संसार वृक्ष है, 84 लख जूना विचों परमदा परमदा अपने कर्मा दा खट्टिया खांदा खांदा ए वृक्ष रूपी इस संसार ते आउंदा मनुष्या जन्म प्राप्त करके। जिस तरह पिंडां विच शहरां विच हर एक मनुख ने अपना अपना घर बनाया, इसे तरह वृक्ष ते भी अपने अपने आलने बनाए होंदे हन। पंखियां ने ओ आके बहिंदे हन ते जां रात बीती सवेरे अपने अपने राही पैंदे हन, उड़ जांदे हन। इसे तरह ए मनुष्या जन्म भी एक वृक्ष है। मनुष्या जन्म पंछी रूप होके संसार ते आउंदा है। मनुख अपने अपने कर्म भोग भोगदा होया, जिन्हां ने ता भाई इथे आके अपना जीवन मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत मिठा बोलदे हन, नेव चलदे हन, अपनी किरत कमाई विचों चंगे पासे भले पासे लाउंदे हन। सास ग्रास नाम जप के जो जांदे हन उन्हां दा आउणा सफल हो जांदा है, ते जेड़े इथे आके माड़े कर्म करके जांदे हन उन्हां नूं फिर 84 लख जून दे गेड़े विच दुख भोगने पैंदे हन। इस लई हजूर कहंदे हन भाई ए मनुष्या जन्म प्राप्त होया है, इस नूं जप जप के सफल करना। जिस तरह दिन चढ़दियां पंछी अपनी अपनी चोग चुगन लई अपने अपने कर्मा दा खट्टिया खान लई उड़ जांदे हन, इसे तरह जदों काल रूपी सूरज चढ़दा है ते मनुख भी फिर ए पंज भूतक शरीर छड़ के तुर जांदा है। इस लई गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन किस नाल की चै दोस्ती, सब जग चलन हार किदे नाल दोस्ती करिए। ख्याल कीता हो सकदा है कि राजा सुखी होवे पर ओ तां सब तो दुखी है। हो सकदा है महल माड़ियां विच रहण नाल कोई सुख प्राप्त होवे, ओ भी नहीं है। हो सकदा है चंगे बस्तर पहनन नाल जां गहने पहन नाल सुख मिल जाए, ओ भी नहीं है। क्योंकि सुख तां हरि दे नाम विच है, सुख तां परमेश्वर दी भक्ति विच है। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन सब जग चलन

एक सच्चे बादशाह एक जंगल विचों विचर रहे हैं। अकाल पुरख की कुदरत नूं तकदे हां साहब जी मरदाने नूं पुछण लगे मरदानिया मौत नूं कितनी कु नेड़े समझदा है। मरदाने ने आख्या गरीब नवाज सच्चे पातशाह असी अलपग जीव हां आप सर।

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आने वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू भी मौत नू दूर समझदा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े ओ मेरा दे साई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। ता धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच

दो सोने दे पैसे दिते, आख्या जा एक पैसे दा झूठ लैके आ, एक पैसे दा सच लैके आ। मर्दाना बाजार विच पुछदा फिरदा है भाई, एक पैसे दा सच चाहिदा ते एक पैसे दा झूठ चाहिदा। कई अनभोल मनुख अज्ञानी पुरुष माहौल भी करदे हन भाई, ऐसी वस्तु कदी बाजारां विच विकियां ते फिर ये है ही की, झूठ की है ते सच की है ये कौन दस सकदा है। ता एक जिस मनुख दे पूर्वले कर्म भगती भाव नाल भरपूर सन, इसका नाम सी मूल चंद। उदे पास जदों मर्दाना गया, आख्या की चाहिदे, ता मर्दाने आख्या भई एक पैसे दा सच चाहिदे, एक पैसे दा झूठ चाहिदे। ता मूल चंद ने एक कागज ते लिख दिता, मरना सच है, और एक कागज ते लिख दिता जीवना झूठ है। जे कोई कहंदा मैं सदा रही संसार विच रहना है, एदे वर्गा झूठ नहीं, ते जे कोई कहंदा भाई ए पता नहीं किस वेले अकाल पुरख दा सदा आ जावे, हम आदमी हां एक दमी ते जाना पवेगा। ए शरीर ता मिथ्या है, ए ता एक दिन मिट्टी दी ढेरी होना ही है। जे कोई कहंदा है भाई ए शरीर मिट्टी दी ढेरी होना है, एदे वर्गा कोई सच नहीं। तो जीवना झूठ है, मरना सच है, इसे लिए हजूर कहंदे अन्ना भाई ए मनुच्छा जन्म जप जप के सफल कर लो, पता नहीं दरगाह तो कदों सदा आ

बहु पर पंच कर परधन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे भूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेड़ी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेका रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत नबेड़ा तेरे जी पैरी एदे अमोलक श्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे। तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया, जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनता कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ श्वास उस दे बदले दे दियो। तां जमदूता ने कहा ए श्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होन लगे। तां कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल शिन कमाई विच धन इकट्ठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन दी कमाई दे बदले मैनू 1 श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते, क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे। भाई जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे पात

कर्म की है। सतगुरु अपने सिख नूं परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़दा है। परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच दृढ़ करवांदा है और गुरसिख नूं सच्चे सुख दी प्राप्ति करवा दिंदा है। ए सुख जो नाम दे राही प्राप्त हुंदा है गुरसिख नूं साध संगत दे विच्चों प्राप्त हुंदा है और इस दी प्राप्ति तो बाद जितने भी दुख हन कलेश हन इन्हां सारयां दी निवृत्ति हो जांदी है। सारे ही संशय दूर हो जांदे हन ते सुखां दी प्राप्ति हो जांदी है। साहिबां दा फरमान है।

गुरु दी जय जयकार करदा है। इस जय जयकार दे पिछे इको ही गल है जो राज दी है, क्योंकि गुरु तो बिना होर कोई ऐसा नहीं जो प्राणी मात्र लई मुकत दा द्वार खोल सके। नौ दरवाजे दसवां द्वार, बुजरे ज्ञानी एहो विचार, एहो ही ब्रह्म दी विचार है। और जेड़ी विचार गुरु तो बिना होर कोई दे नहीं सकदा। साई फरमान करदे हन, गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करे जयकारा, क्योंकि दुनिया विच कोई किसे दी एक दिन दो दिन महीना जा साला बदी मदद कर सकदा है। मगर परमात्मा जो है ओ गुरु राही इस संसार दे विच आके सारे संसार नू फिर परमेश्वर दे नाल जोड़दा है। साई फरमान करदे हन, क्योंकि गुरु ही है जेड़ा दोबारा इस मनुख नू परमात्मा दे घर तक पहुंचा सकदा है। और ऐसे दा ही साथ सच्चा है, जो सच्चे गुरु दा साथ करदा है ओहो ही सच्चे परमात्मा नू

लगी और मैं यही महत्व में अवतारी उजागर यान कियो। तिनके दुख कोटिक दूर गे मथुरा जिमी।

सारे सुख प्राप्त होए, गुरु ने सारियां इच्छा पूर्ण कीतियां, पर नाम की इच्छा ना आई। बाबा जी कहंदे ने लोकां दीआं निगाहां विच वड्डा मनुख होएगा, मेरी निगाह दे विच वो एक विष्ट

मूर्खदा आया प्रहलाद जब तुझ राख ले हर जियो हर नाक शुमार बजाया गुरमुखानु प्रतीत है हर जियो मन मुख भरम भुलाया।

समझ छाए, जो गुरु रूप से मुखी में खुश हो, आत्मनिर्भरता करे, फिर की स्मृति है, चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जब भी